0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: preferably within the manufacturing, paints, construction, building materials, or related industry is required. Visit myjobsinkenya.com to apply.
1: Get your dream job today. Log on to myjobsinkenya.com. Kenya's most effective jobs website. My Jobs in Kenya is a free service and does not charge applicants for registration, applications, or interviews.
2: Do you have a comment or complaint about East FM, one of our programs, or a segment of a program? There are a number of ways you can make a complaint or comment. You could send us an email to complaints@radioafricagroup.co.ke or call us on 0711 046 000. Your complaint will be investigated and a response sent to you within 14 days. Just remember to keep a copy of all communications between you and us. We listen to you because you listen to us. East FM.
3: नैरोबी के संगीत प्रेमी तैयार हो जाएं, दिलकश गजलें, रुमानी धुनें, दिल को छूने वाले सुरों की शाम के लिए मेहुल और शैलेश लेकर आ रहे हैं सुहाना सफर, एक शानदार महफिल पुराने बॉलीवुड के यादगार नगमों के साथ। 3 अक्टूबर शाम 6 बजे जैन भवन लोरेशो के ऑडिटोरियम में जाने माने साजिंदे मेहुल सवानी और शैलेश सवानी का साथ देंगे। याद रहे 3 अक्टूबर सुहाना सफर, और फौरन अपने टिकट्स बुक करें ऑनलाइन www.justbookatickets.com पर।

0: हां जी पौने आठ हो गए ने ते तुसी सुन रहे हो अपना पंजाब सोनी दे नाल ऑन ईस्ट एफएम केनियास प्रीमियर एशियन मिक्स ते चलो जी हुन एक छोटा जिहा चैलेंज मैं दिनी थानू जे तुहाडे कोल 10,000 शिलिंग्स होण ते तुहानू पूरे हफ्ते दा फैमिली दा खर्चा चलाउणा पवे तुसी किन्ने पैसे खाने ते किन्ने ट्रांसपोर्ट ते किन्ने घर लई ते किन्ने एमरजेंसी लई ते सब तो जरूरी सवाल पंजाबी फैमिली विच इमरजेंसी फंड का मतलब की हुंदा या ओबियसली जो परौने अचानक आ जान है ना तुसी मैनू मैसेजेस भेजो ते वेखते हैं कि नरोबी ते पंजाबी घर किन्ने स्मार्ट बजट प्लानर्स आ ते हुण मैं तुहानू दसना चाहुंदी हाँ मैनू बहुत सारे मैसेजेस आए अबाउट हू इज़ द स्पेंडर एंड हू इज़ द सेवर एंड एक कॉमन थीम आ घर दे विच मम्मियां ज़्यादा पैसे खर्चदियां आ दैट्स फूड फॉर थॉट
1: is East FM, Kenya's premier Asian mix.

0: जी हाँ, ऐसे का गाना सस कुटनी पाए दियालाप ग्रुप. एंड मैनू लगता कि समटाइम्स जो मैं ये गाना पहली बारी सुनिया, आई थॉट लोग ये गाना सुन के अफेंड नहीं हो जाते हैं, पर इट्स ऑल लाफ्स एंड गेम्स एंड इट्स अ नाइस सॉन्ग, वेरी कैची सॉन्ग, बट नो अफेंस टू एनी वन एट ऑल. सो अज की गल तो एक चीज साफ आ कि पैसा बचाना औखा जरूर आ, पर अपने खर्चे नू समझना भी जरूरी आ. ते पंजाबी घर की एक क्वालिटी मैनू बहुत ही चंगी लगती है कि असी मुश्किल के टाइम च भी फैमिली लई कुछ ना कुछ मैनेज कर ही लेंदे आ. चाहे रोटी सिंपल होवे, चाहे घर च सारे इकट्ठे बैठ के खाना होवे, असी वैल्यू असली वैल्यू उत्थे आ. ते हाँ जी, सेल के चक्कर च ओ चीज ना खरीद लो जिहड़ी लोड़ ही नहीं. दैट्स टुडेज़ टेक अवे. तो हुण असी जाइए अपनी बुजारत वल. सो अज की बुजारत सी, मैं घर का हिस्सा आ पर घर नहीं. मैनू खोल के दुनिया वेख सकते हो, तुसी दसो मैं की आ. एंड बाय दुनिया, आई थिंक दुनिया इज मोर लाइक अ मेटाफोर कि तुसी बाहर देख सकते हो, क्योंकि बाहर सारे पासे दुनिया दुनिया ही हुंदी आ, है ना. सो मैं फिर ही कहूँगी, मैं घर का हिस्सा आ पर घर नहीं. मैनू खोल के दुनिया वेख सकते हो, दसो कि मैं की आ. तो एदा जवाब आ खिड़की, बारी, विंडो. सो तुसी विंडो दे थ्रू, मैं थोनू पहला क्लू भी दिता सी कि इनू यू डोंट नीड टू नेसेसरली इनू खोल, यू डोंट नीड टू ओपन इट, तुसी उदे ही इनू इदे विचो देख के तुसी बाहर देख सकते हैं. सो वेल डन टू पिंकी, वेल डन टू गुरप्रीत, वेल डन टू मिसिज दंजल फ्रॉम तीखा एंड हरजोत जी, वेल डन. एंड जयश्री, तुसी बिल्कुल सही जवाब दिता. सो इसे वेले अज का शो खत्म हो रहा है, पर तुसी जरूर साढ़े नाल अपना पंजाब शो स्पॉन्सर्ड बाय द ईस्ट अफ्रीकन रामगढ़िया बोर्ड ले जुड़ो हर एतवार 6 to 8 बजे तक, ओनली ऑन ईस्ट FM, केनियस प्रीमियर एशियन मिक्स.
1: Spice with the perfect blend of your favorite music. East FM, East FM, Asian Mix.